0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मुनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: द मैजिकल रेडियो www.themagicradio.com।

0: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: द मैजिकल रेडियो www.themagicradio.com।

0: Shelly D'Amaro.
1: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए, गूगल सर्च इंजन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए, तो SEO मार्केटिंग जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन, कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
2: Happy musical journey on themagicradio.com.

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो डॉट कॉम।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम नेटस होस्ट के तावुन से, netushost.com, www.netushost.com, NATUSHOST, netushost.com। नेटस होस्ट क्या है, ये कौन सी कंपनी है और ये अपनी क्या क्या सर्विसेज देती हैं, आईटी से मुतालिक इसकी सर्विसेज हैं। एक सर्विसेज की वेब होस्टिंग, जो कि आपकी वेबसाइट जो होती है, जो होस्ट होती है इंटरनेट पे, जो ऑनलाइन दिखती है, वो किसी न किसी जगह तो स्टोर होती है ना, उसकी फाइल्स कहीं ना कहीं तो सेव होती हैं, तो वो होस्टिंग सर्वर पे होती हैं। होस्टिंग सर्वर क्या होता है, हमारे पास होस्ट होता है, उसमें से हम आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 2GB 5GB का पैकेज हमारे पास इनिशियल स्टार्टअप लेवल पर है। 2GB का पैकेज हम आपको दे रहे हैं 800 रुपए एक साल के लिए, और 5GB का हम आपको पैकेज दे रहे हैं 1000 रुपए में एक साल के लिए। डोमेन अगर आपने लेना है, डोमेन वो होता है आपकी वेबसाइट का नाम, जो ऑनलाइन लोग लिखते हैं www.xyz, जो कुछ भी आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे कि हमारा नाम है netushost.com, तो ये .com एक्सटेंशन कहलाता है। तो .com के डोमेन में .net का आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो मजीद आपको सिर्फ 700 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 1700 में आपको 5GB का पैकेज मिलेगा वेब होस्टिंग डोमेन के साथ। सालाना, महीना नहीं बल्कि सालाना आपने देना है, और आपकी वेबसाइट ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड हो जाएगी इंटरनेट पे। रिलायबल होस्टिंग है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ हमारे तरफ से होगा, हम टेक्निकली तौर पे भी आपको सपोर्ट करेंगे, हैंडल करेंगे। तो netushost.com, NATUSHOST.com। आप हमारे नुमाइंदे से बात करना चाहें तो आप नंबर डायल कर सकते हैं, अभी नंबर डायल कीजिए। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है हमारी आपके लिए, 1700 रुपए सालाना में आपको 5GB का प्लस डोमेन फ्री आपको हम ये सर्विस दे रहे हैं। नंबर हमारा डायल कीजिएगा 03152206269, रिपीट इट 03152206269, नेटस होस्ट के नुमाइंदे से आप अभी रابطہ करें, 24 घंटे में आपकी वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगी।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 031522062 69 पर।

वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 031522062 69 पर।

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर, या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मुनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो.com।

0: अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर। I'm about to strip and I want a quick, can you
1: handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
2: We have a best listener.
3: Radio to bada alash hai.

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर, या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com।

0: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

birthday, Jay.

0: अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर। I'm about to strip and I want a quick, can you handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
1: We have a best listener.
2: Radio to bada lagsha.

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मुनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: द मैजिकल रेडियो www.themagicradio.com।
2: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट यू बाय अपना कोहार.com।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: Soundtastic, back-to-back, super hit on your station, themagicradio.com.
2: We have a best listener.
3: Radio to bada alash hai.

0: ਸਈਆਂ ਤੇਰਾ ਟਰਪੇ ਟਰਪੇ।
1: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिसहोस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिसहोस्ट।
2: I'm about to strip and I want it quick, can you handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
3: We have a best listener.
4: Radio to bada lagsha.

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मुनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: द मैजिकल रेडियो www.themagicradio.com।

0: अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

कभी झूठा लगता है, कभी सच्चा लगता है। एहसास ख्यालों का कभी अच्छा लगता है। ऐ दिल तू मुझको बता, ऐसी क्या बात है, ऐसी

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: Happy musical journey on themagicradio.com.

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट। I'm about to strip and I want a quick, can you handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
1: We have a best listener.
2: Radio to bada lash hai.

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: I'm about to strip and I want a quick, can you handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, the

ये अपनी क्या क्या सर्विसेज देती हैं, आईटी से मुतालिक इसकी सर्विसेज हैं। एक सर्विसेज की वेब होस्टिंग, जो कि आपकी वेबसाइट जो होती है, जो होस्ट होती है इंटरनेट पे, जो ऑनलाइन दिखती है, वो किसी न किसी जगह तो स्टोर होती है ना, उसकी फाइल्स कहीं ना कहीं तो सेव होती हैं, तो वो होस्टिंग सर्वर पे होती हैं। होस्टिंग सर्वर क्या होता है? हमारे पास होस्ट होता है, उसमें से हम आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 2GB 5GB का पैकेज हमारे पास इनिशियल स्टार्टअप लेवल पर है। 2GB का पैकेज हम आपको दे रहे हैं 800 रुपए एक साल के लिए, और 5GB का हम आपको पैकेज दे रहे हैं 1000 रुपए में एक साल के लिए। डोमेन अगर आपने लेना है, डोमेन वो होता है आपकी वेबसाइट का नाम, जो ऑनलाइन लोग लिखते हैं www.xyz, जो कुछ भी आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे कि हमारा नाम है netishost.com, तो ये .com एक्सटेंशन कहलाता है। तो .com के डोमेन में .net का आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो मजीद आपको सिर्फ 700 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 1700 में आपको 5GB का पैकेज मिलेगा वेब होस्टिंग डोमेन के साथ। सालाना, महीना नहीं बल्कि सालाना आपने देना है, और आपकी वेबसाइट ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड हो जाएगी इंटरनेट पे। रिलायबल होस्टिंग है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ हमारे तरफ से होगा, हम टेक्निकली तौर पे भी आपको सपोर्ट करेंगे, हैंडल करेंगे। तो netishost.com NATUSHOST.com। आप हमारे नुमाइंदे से बात करना चाहें तो आप नंबर डायल कर सकते हैं, अभी नंबर डायल कीजिए। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है हमारी आपके लिए, 1700 रुपए सालाना में आपको 5GB का प्लस डोमेन फ्री आपको हम ये सर्विस दे रहे हैं। नंबर हमारा डायल कीजिएगा 03152206269। रिपीट इट, 03152206269। नेटस होस्ट के नुमाइंदे से आप अभी रابطہ करें, 24 घंटे में आपकी वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगी।

0: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: द मैजिकल रेडियो, www.themagicradio.com।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com।

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिसहोस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिसहोस्ट। I'm about to strip and I want it quick, can you handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com. We have a best listener.
1: Radio to bada lash hai.

0: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर। I'm about to strip and I want it quick, can you handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com. We have a best listener.
1: Radio toh bada lash hai.

0: अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर। I'm about to strip and I want a quick, can you handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
1: We have a best listener.
2: Radio to bada lagta hai.

0: अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर। I'm about to strip and I want a quick, can you handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
1: We have a best listener.
2: Radio to bada alash hai.

0: Marcelo D'Amaro.
1: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
2: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com।

0: होस्टिंग सर्वर क्या होता है? हमारे पास होस्ट होता है, उसमें से हम आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 2GB 5GB का पैकेज हमारे पास इनिशियल स्टार्टअप लेवल पर है। 2GB का पैकेज हम आपको दे रहे हैं 800 रुपए एक साल के लिए, और 5GB का हम आपको पैकेज दे रहे हैं 1000 रुपए में एक साल के लिए। डोमेन अगर आपने लेना है, डोमेन वो होता है आपकी वेबसाइट का नाम, जो ऑनलाइन लोग लिखते हैं www.xyz, जो कुछ भी आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे कि हमारा नाम है netishost.com, तो ये .com एक्सटेंशन कहलाता है। तो .com के डोमेन में .net का आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो मजीद आपको सिर्फ 700 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 1700 में आपको 5GB का पैकेज मिलेगा वेब होस्टिंग डोमेन के साथ। सालाना, महीना नहीं बल्कि सालाना आपने देना है, और आपकी वेबसाइट ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड हो जाएगी इंटरनेट पे। रिलायबल होस्टिंग है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ हमारे तरफ से होगा, हम टेक्निकली तौर पे भी आपको सपोर्ट करेंगे, हैंडल करेंगे। तो netishost.com, NATUSHOST.com। आप हमारे नुमाइंदे से बात करना चाहें तो आप नंबर डायल कर सकते हैं, अभी नंबर डायल कीजिए। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है हमारी आपके लिए, 1700 रुपए सालाना में आपको 5GB का प्लस डोमेन फ्री आपको हम ये सर्विस दे रहे हैं। नंबर हमारा डायल कीजिएगा 03152206269, रिपीट 8035226269, 03152206269। के नुमाइंदे से आप अभी रابطہ करें, 24 घंटे में आपकी वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगी।
1: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
2: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक radio.com। One more time.

0: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए, गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर। I'm about to strip and I want a quick, can you
1: handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
2: We have a best listener.
3: Radio to bada alash hai.

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: I'm about to strip and I wanna quick, can you handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
2: We have a best listener.
3: Radio to bada alaish hai.

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com.
2: This song is brought to you by apnakohar.com.

0: tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum.
1: जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है, क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही?

0: अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर, या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।

0: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए, गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

Best day, Jay.

0: Jamaica swagger.
1: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
2: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो.com।

बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मुनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: द मैजिकल रेडियो, www.themagicradio.com।

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: Happy musical journey on themagicradio.com।
2: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

0: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com।

आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनुआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315220 6269 पर।

0: Worldwide web hosting. NetusHost.com is giving you a 5GB web hosting with free.com domain in just $17 only. 5GB hosting, $17 per year, not a monthly, it's just per year. For more detail, contact us 0315-21-2261 or email sales@netushost.com.
1: Happy musical journey on themagicradio.com.
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम नेटस होस्ट के तावुन से netushost.com www.netushost.com NATUSHOST netushost.com. नेटस होस्ट क्या है, ये कौन सी कंपनी है और ये अपनी क्या क्या सर्विसेज देती हैं? आईटी से मुतालिक इसकी सर्विसेज हैं। एक सर्विस है इसकी वेब होस्टिंग, जो कि आपकी वेबसाइट जो होती है, जो होस्ट होती है इंटरनेट पे, जो ऑनलाइन दिखती है, वो किसी न किसी जगह तो स्टोर होती है ना, उसकी फाइल्स कहीं ना कहीं तो सेव होती हैं, तो वो होस्टिंग सर्वर पे होती हैं। होस्टिंग सर्वर क्या होता है? हमारे पास होस्ट होता है, उसमें से हम आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 2GB 5GB का पैकेज हमारे पास इनिशियल स्टार्टअप लेवल पर है। 2GB का पैकेज हम आपको दे रहे हैं 800 रुपए एक साल के लिए, और 5GB का हम आपको पैकेज दे रहे हैं 1000 रुपए में एक साल के लिए। डोमेन अगर आपने लेना है, डोमेन वो होता है आपकी वेबसाइट का नाम, जो ऑनलाइन लोग लिखते हैं www.xyz, जो कुछ भी आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे कि हमारा नाम है netushost.com, तो ये .com एक्सटेंशन कहलाता है। तो .com के डोमेन में .net का आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो मजीद आपको सिर्फ 700 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 1700 में आपको 5GB का पैकेज मिलेगा वेब होस्टिंग डोमेन के साथ। सालाना, महीना नहीं बल्कि सालाना आपने देना है, और आपकी वेबसाइट ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड हो जाएगी इंटरनेट पे। रिलायबल होस्टिंग है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ हमारे तरफ से होगा, हम टेक्निकली तौर पे भी आपको सपोर्ट करेंगे, हैंडल करेंगे। तो netushost.com NATUSHOST.com। आप हमारे नुमाइंदे से बात करना चाहें तो आप नंबर डायल कर सकते हैं, अभी नंबर डायल कीजिए। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है हमारी आपके लिए, 1700 रुपए सालाना में आपको 5GB का प्लस डोमेन फ्री आपको हम ये सर्विस दे रहे हैं। नंबर हमारा डायल कीजिएगा 03152206269। रिपीट इट 03152206269। नेटस होस्ट के नुमाइंदे से आप अभी राब्ता करें, 24 घंटे में आपकी वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगी।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए, गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए, तो SEO मार्केटिंग जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिज वेब सॉल्यूशन, कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.natishost.com योर हॉस्टिंग पार्टनर Natish Host.
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com.

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मुनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com।

झूठा लगता है, कभी सच्चा लगता है। एहसास ख्यालों का कभी अच्छा लगता है। ऐ दिल तू मुझको बता, ऐसी क्या बात है, ऐसी

अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 03152206269 पर।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मुनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर। I'm about to strip and I want a quick, can you
1: handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
2: We have a best listener.
3: Radio to bada lash hai.
0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम नेटस होस्ट के तावुन से, netushost.com, www.netushost.com, NATUSHOST, netushost.com। नेटस होस्ट क्या है, ये कौन सी कंपनी है और ये अपनी क्या क्या सर्विसेज देती हैं? आईटी से मुतालिक इसकी सर्विसेज हैं। एक सर्विस है इसकी वेब होस्टिंग, जो कि आपकी वेबसाइट जो होती है, जो होस्ट होती है इंटरनेट पे, जो ऑनलाइन दिखती है, वो किसी न किसी जगह तो स्टोर होती है ना, उसकी फाइल्स कहीं ना कहीं तो सेव होती हैं, तो वो होस्टिंग सर्वर पे होती हैं। होस्टिंग सर्वर क्या होता है? हमारे पास होस्ट होता है, उसमें से हम आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 2GB 5GB का पैकेज हमारे पास इनिशियल स्टार्टअप लेवल पर है। 2GB का पैकेज हम आपको दे रहे हैं 800 रुपए एक साल के लिए, और 5GB का हम आपको पैकेज दे रहे हैं 1000 रुपए में एक साल के लिए। डोमेन अगर आपने लेना है, डोमेन वो होता है आपकी वेबसाइट का नाम, जो ऑनलाइन लोग लिखते हैं www.xyz, जो कुछ भी आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे कि हमारा नाम है netushost.com, तो ये .com एक्सटेंशन कहलाता है। तो .com के डोमेन में .net का आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो मजीद आपको सिर्फ 700 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 1700 में आपको 5GB का पैकेज मिलेगा वेब होस्टिंग डोमेन के साथ। सालाना, महीना नहीं बल्कि सालाना आपने देना है, और आपकी वेबसाइट ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड हो जाएगी इंटरनेट पे। रिलायबल होस्टिंग है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ हमारे तरफ से होगा, हम टेक्निकली तौर पे भी आपको सपोर्ट करेंगे, हैंडल करेंगे। तो netushost.com, NATUSHOST.com। आप हमारे नुमाइंदे से बात करना चाहें तो आप नंबर डायल कर सकते हैं, अभी नंबर डायल कीजिए। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है हमारी आपके लिए, 1700 रुपए सालाना में आपको 5GB का प्लस डोमेन फ्री आपको हम ये सर्विस दे रहे हैं। नंबर हमारा डायल कीजिएगा 03152206269। रिपीट इट, 03152206269। नेटस होस्ट के नुमाइंदे से आप अभी रابطہ करें, 24 घंटे में आपकी वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगी।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर। I'm about to strip and I want it quick, can you
1: handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
2: We have a best listener.
3: Radio to bada lash hai.

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: Happy musical journey on themagicradio.com.

0: अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए, गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए, तो SEO मार्केटिंग जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन, कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: द मैजिकल रेडियो www.themagicradio.com।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मुनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: Happy musical journey on themagicradio.com।